दूसरी क्लास में डालना चाहते हो तो सितंबर से नवंबर 2026 के बीच एजुकेशन ब्यूरो से इलेक्ट्रॉनिक आरसी या एपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं वो पेरेंट्स जिनका बच्चा हांगकांग रेजिडेंट है, 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले पैदा हुआ हो और 2027-28 में K1 क्लास ज्वाइन किया हो। एप्लीकेशन ऑनलाइन आई एम स्मार्ट ऐप या EDB वेबसाइट से कर सकते हैं। हार्ड कॉपी फॉर्म और गाइडेंस नोट्स EDB वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या होम अफेयर्स डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से भी ले सकते हैं। कोई सवाल हो तो ऑफिस आवर्स में EDB के किंडरगार्टन एडमिनिस्ट्रेशन 2 सेक्शन से कॉन्टैक्ट कीजिए 3540-6808 या फिर 3540-6811। ओके, पढ़ते हैं अगले अनाउंसमेंट पर। दिस इज ब्रेस्ट अवेयरनेस एंड ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन। हांगकांग में महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। हर महिला को अपने ब्रेस्ट्स के नॉर्मल लुक और फील के बारे में पता होना चाहिए। हमेशा ब्रेस्ट अवेयर रहे। कोई भी अनयूजुअल चेंज दिखे तो तुरंत ध्यान दें, जैसे ब्रेस्ट में लंप, साइज या शेप में फर्क, निप्पल अंदर की तरफ खींच जाना, स्किन का टेक्सचर बदल जाना। अगर ऐसा कुछ लगे तो जल्दी डॉक्टर से मिलो, जल्दी पकड़ने से जिंदगी बच सकती है। प्रिवेंशन के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, रेगुलर एक्सरसाइज करो, हेल्दी वेट और वेस्ट रखो, अल्कोहल बिल्कुल छोड़ दो। ज़्यादा जानकारी के लिए www.cancer.gov.hk/breastcancer पे जा सकते हैं। अपना ख्याल रखें। ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले अनाउंसमेंट पर। दिस इज एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट। क्या आप जॉब ढूंढ रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहां से मदद और सलाह मिलेगी? लेबर डिपार्टमेंट ने पूरे हांगकांग में 10 जॉब सेंटर्स खोले हैं। यहां जॉब सीकर्स को बिल्कुल फ्री मदद मिलती है। किसी भी जॉब सेंटर में जाकर आपको लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वहां एम्प्लॉयमेंट एडवाइज़र से बात कर सकते हैं, अपनी जॉब की ज़रूरतों के बारे में डिस्कस करें और उनके स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ज्वाइन करें जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाते हैं। खासकर एथनिक माइनॉरिटी जॉब सीकर्स के लिए रेशियल डाइवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी है। इसमें रजिस्टर्ड सोशल वर्कर्स आपको एक स्टॉप सॉल्यूशन देंगे, पूरी मदद केस बाय केस अप्रोच से। लेबर डिपार्टमेंट की सर्विसेज इंग्लिश और चाइनीज में हैं। अगर आप इंग्लिश या चाइनीज नहीं बोल पाते तो वो आपके लिए फ्री इंटरप्रिटेशन सर्विस अरेंज कर देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाइए www.jobs.gov.hk/em या इंटरएक्टिव एम्प्लॉयमेंट सर्विस मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले अनाउंसमेंट पर। दिस इज हेल्थ टिप्स फॉर प्रिवेंटिंग हीट स्ट्रोक। सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन या दिलाता है बहुत गर्मी में हीट एग्जॉस्टन और हीट स्ट्रोक से बचिए। सेफ रहने के लिए रेगुलर पानी पियो, कैफीन और अल्कोहल से बचो, हल्का और ढीला कपड़ा पहनो, हवादार या एयर कंडीशन जगह में रहो। बाहर ज़्यादा मेहनत वाला काम मत करो, आउटडोर एक्टिविटीज सुबह या शाम को प्लान करो, आउटडोर वर्कर्स रेगुलर ब्रेक लो और छांव में आराम करो। बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और क्रॉनिक बीमारी वाले लोग ज़्यादा केयरफुल रहें। बच्चों को कभी भी बंद गाड़ी में अकेला मत छोड़ें। यूवी इंडेक्स हाई हो तो सीधा धूप से बचें। एसपीएफ 30 या उससे ऊपर सनस्क्रीन लगाएं, यूवी ब्लॉकिंग सनग्लासेस पहनें और छांव में रहें। अगर चक्कर आए, सर दर्द हो, उल्टी जैसा फील हो या कन्फ्यूजन हो तो तुरंत आराम करें और डॉक्टर से मिलें। गर्मी में अलर्ट रहें, कूल रहें और अपना ख्याल रखें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.chp.gov.hk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऑलराइट, पढ़ते हैं अगले अनाउंसमेंट पर। दिस इज जॉब फेयर टू बी हेल्ड ऑन 17th September 2026। लेबर डिपार्टमेंट एक इंक्लूसिव जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है एथनिक माइनॉरिटीज के लिए। डेट है 17 सितंबर 2026। टाइम दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक। जगह चिनवान जॉब सेंटर। 3 कंपनीज शंग्रीला होटल कावलून, CCG प्रॉपर्टी सर्विसेज और 10 सर्विस हांगकांग लगभग 100 से ज़्यादा जॉब्स ऑफर कर रही हैं। पोजीशंस हैं जैसे ऑन साइट टेक्नीशियन, कस्टमर सर्विस एम्बेसडर, असिस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफिसर, क्लीनर, सिक्योरिटी गार्ड, कॉन्सियर्ज, असिस्टेंट रूम अटेंडेंट, होस्ट, होस्टेस, कॉमीज और बहुत

ज़्यादातर जॉब्स में चाइनीज़ लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है या बहुत कम है. एम्प्लॉयर्स वहीं पर ऑन द स्पॉट इंटरव्यू करेंगे. फ्री इंटरप्रिटेशन सर्विस भी अवेलेबल है. रिजर्वेशन ज़रूरी है. एथनिक माइनॉरिटी जॉब सीकर्स का स्वागत है. ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप www.jobs.gov.hk पर जा सकते हैं. ज़रूर आइए और जॉब फिक्स करें. ऑलराइटी, बढ़ते हैं जी आखिरी अनाउंसमेंट पर. This is large-scale job fair for ethnic minorities. Labor Department एक बड़ा दो दिन का job fair organize कर रहा है. Name, building a multicultural workplace job fair. Date है 16 और 17 सितंबर 2026. जगह है McPherson Stadium, Mongkok. Time है सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक. लगभग 50 companies अलग-अलग industry से आएंगे. वो अपनी जॉब्स डिस्प्ले करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे और वहीं पर एप्लीकेशंस भी लेंगे. अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो ये मौका हाथ से मत जाने दो. ज़रूर आइए. पार्टिसिपेटिंग कंपनीज और वैकेंसीज की पूरी डिटेल्स के लिए आप इस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं www.jobs.gov.hk. ओके, इसी के साथ हमारे सारे अनाउंसमेंट हो गए ख़त्म. सो आई एम गोना लेट यू लिसन टू द प्लेलिस्ट नॉनस्टॉप. तो पहला गाना है, मिस्टर सिंह ने रिक्वेस्ट किया है, गाने का नाम है पुलिस बाय चीमा वाई. देन वी हैव गॉट आंसर हु रिक्वेस्टेड तुम ही आना फ्रॉम मरजामा. एंड वी हैव गॉट बाज खान हु रिक्वेस्टेड सीईओ बाय चीमा वाई. देन वी हैव गॉट सोनिया कौर हु रिक्वेस्टेड नेवर एवर बाय अर्जुन टिल्लो. देन वी हैव गॉट सलमा हु रिक्वेस्टेड जी बाय बलबीर. देन वी हैव गॉट अनम हु रिक्वेस्टेड बिग फ्लेक्स बाय अर्जुन टिल्लो. Then we've got Bruno, who requested Challenge by Ninja. Then Afai, who requested Tibbyanda Put by Sidhu Moosewala. Ruby requested Pehle To Nahi by Danji. Then we've got Yaseen, who requested Knife Brows by Danda Niyoliwala. Then we've got Amrit Sandhu, who requested Cut by Rami and Prince Randhawa. And then we've got a request from CH, who requested Jela by Sidhu Moosewala. All right, guys, that's it for me. Enjoy the playlist. Enjoy all the songs. Milte hain ji agle Friday. We are going to be live next week on Facebook. So, apne request bhejna shuru kar do. And I shall see you next Friday, same time, same place. Tab tak ke liye ji, chill karo, tension na lo, chardi kalach raho, rab rakha.